तू ठाकर ऊच भगवाना, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर साहा पातशाहो, निचल चौर छत। वाहिगुरु जी सोही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे भाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। रहाओ करत बेकार दो कर चारत,

जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी।

बख्शकता मां चरनी लाल करी तरस रहमाना तल बिगा रहा कई जन्मा दे दर्श।

जे ना कूक सुनी तू मैया जग मारू गा ताना तलब गा रहा कई जनमां दे दर्शन।

0: सुख लेना चाहुंदा जे छड दे कुल हिरदे दे साड़े हन माड़े कम्मा दे हुंदे अंत नतीजे माड़े।
1: खालसा जी इनू भयानक बिमारी लग गई, मंजे ते प्यार रोंदा रहिंदा है। जेड़े यार बेली सुखां वेले इहदी माया ते मौजां करदे सी, आंदे सी प्रेमिया अग ला के भी फूकदा रहे ते तेरे प्यो दी कठी कीती माया मुकनी नहीं, नजारे लुट नजारे ए जिंदगी मुड़के नहीं मिलनी, ओह हुण कोई लागे नहीं आउंदा। खान पीन वाले कौली जट यार मुड़के किथे लभदे खालसा जी, तुहानूं पता ओह फिर मखौल करदे ने बह के, कहिंदे ओह प्या जे प्रेमा किदां आकड़ आकड़ के तुरदा हुंदा सी, बड़े लंगर लाउंदा सी और माड़े कर्म करदा सी, ओह ही मुड़के मजाक करन लग पैंदे, कोई इहदी बेचारे दी बात नहीं पुछदा। माया दे विच सुख बड़े ने, पर कई वारी बिना मतलब तो कठी कीती माया, ठगी चोरी दी माया बंदे दा जीवन भी बर्बाद कर दिंदी है। इसे करके महाराज ने इस नूं गुजरान कहा भी गुजारे जोगी रहे ते चंगी है। हजूर पातशाह महाराज जी का जीवन इतिहास ए बात कोई नहीं इहदी पुछदा, मंजी किस तरह चका के रोंदा करलाउंदा मंदर गया, पुजारी ने बूहा ढो लिया, उन्हें आख्या जा चलिया जा मंदिर दे अंदर बढ़ेगा ते किसी होर जी नूं कोड़ कर देगा, उदो तू करदा रहा माड़े काम ते हुण भगवान तेरी मत करे। उथो इहदी रेस लवाई वापस आ गया। कईआं पीरां फकीरां दे तरले मारे, कोई इहदी बात ना पुछे। ओ यार बेली सज्जन खाण पीण वाले जिहड़े दे आले दुआले रहिंदे सी जुंडली वाले सब भज गए। इक गुरू का सिख बाणी पढ़दा सी, इहदे पिंड इहदे नजदीक रहिंदा सी, ते कुदरती गुरु नानक साहिब महाराज ने ना अपने सिख नूं जिहड़ा दिल दित्ता तरस भरिया दित्ता है। गुरु के सिख दे दिल विच तरस आ जांदा। अज भी तुसीं वेखो किते कोई मुश्किल बने, गुरु के खालसे उथे जाके मदद करदे आ, भावे कोई मजहब होवे कोई जात होवे नहीं विचार करदे। वर्दियां गोलियां विच भी कई वारी तुसीं वेखदे हो खालसा एड वाले पहुंच जांदे आ। तो एक किस्म दा इक महाराज जी ने सिख कौम नूं दिल ही इस तरह दा दित्ता, इह रहम विच आ जांदा है। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਤਰਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਾ, ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਬੜੇ ਆ ਪਰ ਉਥੇ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੋਇੰਦਵਾ

फिर बस बंदा रह जांदा ए बस फिर बंदा रह जांदा ए जिंदगी पर पछताने नू हाथ जोड़ के करा बेनती

0: मेरा चित्त ना चलत, नहीं चल रहा। पता है चंचल दे अर्थ की ने, चल चल चल चल हर वक्त ही चल रहा है। तन बैठा है ता भी मन चलता ही रहता है, चंचल है। चल चल चलता चलता चलता रुकता ही नहीं, कदे टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग दा शब्द कहिंदे ने, मन मेरा पिंगला हो गया, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग, एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहिया जांदियां ने, भई मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कित्थों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करदे ने, मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हां नु मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे। पहले कित्थों एकागर हो जाएगा? ये मन नु एकागर करके बाणी पढ़ो, बिल्कुल गलत। इन्हां लोगों नु मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नु शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा? बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा? बिन भागा सत्संग न लब्भे, बिन संगत मैल भरी जे जियो। इते मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। कबीर कहिंदे ने, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीक ही कीता होगा, जरूर इना भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा है जिहड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया है। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा है। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकदा, गूंगा समझा नहीं सकदा। बिसम बिसम बिसमे ही भइए लाल, गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आइए, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिधारथ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुरदे असी भी देखदे आं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे ने हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे च महसूस करता है। संवेदना, असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारां नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखिया होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनु इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट कीती होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनू कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सत्संग विच आउंदिया आउंदिया एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध च मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी के नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होंदा, खेल कुछ भी नहीं। इत लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है, बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नू कहिंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर ओही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं, सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमा ने सिंहासन जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहिंदे ने, वड्डा तख्त उहनूं औरंग कहिंदे ने, ऐ छोटा तख्त इहनूं मसनद कहिंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं इह मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उहनां नूं मसंद कहिंदे आ, फारसी दा लफ़्ज़ है शुद्ध मसनद, ए मसनद है। जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है, इहनूं फारसी दे च औरंग कहिंदे ने। वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नूं जेल दे च पा के ते तीन भरावां नूं मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन सी, शायद आप नूं पता होवे, आदकाल तो कवि लोग, गुणी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे, रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहिंदे ने उपनाम, कोई उपमा है, गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे, तखल्लुस रखे। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताई मुसलमान कहिंदे ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधां बाई की कुख तो पैदा हुई सी, ते जोधां बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन सी। ये राजपूत अपने धी भैणा दे डोले मुगलां नूं देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधां बाई ए बेगम से अकबर दे, इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम। वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च, जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया, कल गुरुपुरब तुसीं मनाना। इसने ही तरह तरह के तसीहे ताए, इसने ही बहुत वड्डा जुलम किया। दोगला सी, जोधां बाई का लड़का सी, अकबर का लड़का सी, तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जद सिंघासन ते बैठा है, तख्त ते बैठा है, फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मयोदीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तख्त नूं वड्डा तख्त, जेब कहिंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तख्त दा शिंगार, तख्त दी शोभा, तख्त दी माण मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जुर्रत जफरनामे दे राहीं लिखदे ने औरंगजेब नूं, न जेबन तुरा नाम औरंगजेब, के औरंगजेब न बायद फरेब, ए मयोदीन ए नाम तेनू शोभा नहीं देंदा, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त ते बैठता है, तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो रया मरा चारा साजी ब सिद को सफा न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरे महा फरे भी हैं तो चूठा है चलाक है हमो मर्द बायद शबद सुखनवर न शिक में दिगर दर दहाने दिगर तेरी जबान ते कुछ और है तेरे दिल दे कुछ और है तू ते मनुख ही नहीं है तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए जुर्रत उसनु जो है ऐसा आखे औरंग वड्डा तख्त छोटा उनु मसनद कहंदे ने पंजाबी शब्द बन गया मसंद जिन्हां नु गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी मंजी बख्शी सी तख्त बख्शिया सी इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई संगत ने मान सम्मान इतना दिता इन्हां कोल हजम ना होया इन्होंने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तखत मिले है लेकिन सिख जगत देच आज गाल बन गई किसी नूं गाल कढ़नी होवे तो कह दिता जाता है मसंद है निरा ही मसंद है लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तखत जिससे बैठे हैं यह छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन बे संगत उची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन गुरबाणी सुनान ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संग नूं ए देख सकन संबोधन कर सकन ते विचार दा ज्ञान दा गुरबाणी दा सन्मान होवे सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा गालिब कहिंदा एक खेल है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक ए औरंग ये बादशाह दा तख्त बच्चियां दा तमाशा है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंगे सुलेमां मेरे नजदीक एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे हजरत ईसा दे मौजजे कथावां ने कि हजरत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हाथ रख देंदे सन ओ तंदुरुस्त हो जांदा सी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington।
2: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां। 1550 ते गुरबाणी विचार तुहाडे तक पहुंचाउण दी सेवा कर रहे हन फ्रेज़र व्यू सीडर माता नसीब कौर जी दी पवित्र याद विच। इस नेक सेवा लई असी फ्रेज़र व्यू सीडर दे दिलों धन्नवादी हां।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.
4: एक दिन गुरु नानक दे महाराज भाई मरदाना जी नूं लैके एक सिख दे घर रहे तां कन्या दी कच्ची छन सी उहदी उहने बड़ा अदब सत्कार कीता। उस सिख दे घर विच दीवान सजे संगत जुड़ी रात पै गई लोग अपने घरां नूं चले गए तां उस सिख ने महाराज की सेवा विच कहा महाराज मेरे घर ठहरो घर ते छोटा है पर पातशाह इस घर विच आए हो तो हुण इत्थे थोड़े दिन रह के जायो। महाराज ने उहदे घर विच विश्राम कीता। इक्को छन सी तां सर्दियां दी रुत सी। ओ सिख ने गरीब ने सोचिया मेहमान आए ने गुरु नानक साहिब रब दा रूप ने बाहर किवें पा दां। उहने अपने घर परिवार बच्चियां नूं कहा आपां बाहर सौ जांगे महाराज और सच्चे पातशाह दे साथी वास्ते अंदर विस्तरा कर दई। तां सच्चे पातशाह वास्ते ओ अंदर छन दे अंदर महाराज जी दा आसन कर दिता। जिन्नी यथा शक्त कोई साफ कपड़ा चादर सी विछा दित्ती अपना और अपने बच्चियां दा विस्तरा बाहर ला लिया। तां धन गुरु नानक दे महाराज उस छन विच सुते ने नाल महाराज दे भाई मरदाना जी ने ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਰਖਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸੰਕਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਛੰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਿਣੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਛੰਨ ਚੋ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਤ ਛੰਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਵਰਖਾ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਿਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਊ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਈ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਬਰੀਕ ਕਿਣੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੰਗਾਓ, ਅੱਗ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਬਲਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਛੰਨ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਆ ਪਕੜੋ, ਬਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਲਟਾ ਲਟ ਬਲਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਓ ਰੱਖੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚ, ਮਸਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਛੰਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੰਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ, ਤੇਰੀ ਛੰਨ, ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਛੰਨ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ। ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
5: ਬਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰਤਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵੇ।
4: ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

दुनिया दी सब तो वड्डी अकल चाहिए प्रभु नू समझण लई, गुरु नू समझण लई। इस चक्कर च ना पैना, मंदिर विच भीड़ है, गुरुद्वारे विच भीड़ है, मस्जिदां विच भीड़ है, बड़ा धार्मिक जगत है, गुस्ताखी माफ, धार्मिक जगत है, धर्म दी समझ रखे बिना, धर्म दे बोध तो बिना धार्मिक इकट्ठ, धर्म दी समझ तो बिना धार्मिक इकट्ठ, समझ तो बिना, बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ, धर्म दी समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे, मां है, पिता है, कि चाचा है, ताया है, पुत्र है, भैन है, भरा है, ये मामे ने, मासियां ने, इसकी समझ ही ना होवे, बहुत वड्डा समाज दा इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे, वो इकट्ठ सारे दा सारा बेमैने। बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, धर्म दी समझ ना होवे, धर्म दा बोध ना होवे। और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है जमीन।

नहीं आएंगे। चंदन तरन बन बन साधना पुर पुर माए, होंदा ते है चंदन दा बूटा पर हर जगह नहीं होंदा, हर जंगल दे च नहीं होंदा। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आउंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है, कश्मीर दे च आउंदा है, एक अद मुलक होर, बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बोके वेख्या गया नहीं आउंदा, इधर हिमाचल दे च भी बोके देख्या गया नहीं होया, कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देख्या गया नहीं होया, बीज के देख्या गया नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नूं जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश, उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत, होंदे ते ने धार्मिक मनुख, गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा, होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा, होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे, हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे च धनवान होंदे ने, कारोबारी होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने, हर शहर दे च संत नहीं होंदा, भगत नहीं होंदा, हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना, हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, दार्शनिक फिलोसफर होंदे ने, हर शहर दे च कलाकार होंदे ने, हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, चोटी दे धनवान होंदे ने, हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरन बन बन साधना पुर पुर माए, एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा है। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहीदी है धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा है, बहुत घट आउंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं, फिर इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं आउंदा। हुण होर भी मैनूं कहण लेना, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है, धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी

जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो

तब हौं पतत तरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजेओ पस ज्यों उदर परों कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौं पतत तरों। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान गुरु सवारे सत संगी जनो अज दे ए विशेष दीवान जो इस स्थान पर आयोजित किते गए ने शब्द चौंकी जथा जो धन गुरु नानक साहब जी दी अमृत गुरबाणी नू यतन कर रहा है घर घर विच पहुंचाण दा इस जथेबंदी वल्लों अज ग्यारवां एक गुरमत समागम आयोजित किया गया अमृत बचना दा कीर्तन आप जी नू धन गुरु रामदास सचे पिता जी हजूर दे दर घर दे कीर्तनिये गुरसिख भाई साहब भाई बख्शी सिंह जी सरवण करा रहे सन। आओ जो उन्हां ने आसा की वार दी संपूर्णता ते भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना विचों एक पौड़ी दा कीर्तन सरवण कराया ते अक्सर इस पौड़ी दा कीर्तन धन गुरु रामदास जी दे दर ते बैठ के भी भाई साहब कुणी आप जी नूं सरवण कराउंदे आप सब ने बड़ी भावना नाल इस पौड़ी नूं गायन कीता। आओ धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द दी रोशनी विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द दी शां थले भाई साहब जी दी इस रचना दी विचार आपां कर सकीए। गुरु ग्रंथ साहब कृपालु कृपा करन आप जितने भी हजूर दी चरण शरण विच इकत्र होए हो यतन करिए अपने अंदर नूं संकोचन दा क्योंकि ख्याल फुरने खिन खिन निरंतर साडे मन विचो इन्हां दा प्रवाह चल रहा है। कितना चंगा होवे इन्हां फुरनियां दे प्रवाह विच मेरे सतगुरु जी दे अमृत बचना दी याद वस जाए। आप करो कृपा।

या इंज कह लो सारे मजहब भी उस तो आउंदन जिदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, नमस्तस्त अजबे, ये अजब स्वरूप परमात्मा तैनो नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनो, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए, घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है, भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम इको हो जाता है, कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वह हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी ते है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक आते हैं, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल की गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंद बंद, बिठाओ उसनूं तत्ती तवी, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सूली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर दी लड़ाई दे अगले दो दंद तोड़ दिते गए। सुकरात नू जहर दा प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नू तुसी सूली ते टंगे, एक नू जहर दे के मार रहे, एक दे दंद तुसी तोड़ दिते, एक नू तत्ती तवी ते बिठाया, एक नू चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्होंने फरजंद, उन्होंने बच्चों नूं, पोतरियां नूं तुसी दीवार दे चिणदे पाए, किसी दे बंद बंद कट रहे हो, किसी नूं उल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो इन्हां ने चोरी कीती है, यारी कीती है, बलात्कार कीता, किधरे कतल कीता है, एक भी जुर्म नहीं, इन्हां दा एक कसूर है कि यह बेकसूर है। कसूर वारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है, गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना।

कार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवार। तुम तहन तहनी उदार त्यागी श्रावणन सुनियत।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसम दि नूर अरसह पुरसह चटी तो दड़ठे सचे पात सह मल जा।

कर्म मन धर्म सो संजम करह अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कुमावे सो थाए ना पवै दरगह हुए खुआर। सबना रागा विच

सुतड़े असंख माया झूठी कारने नानक से जागन जे रसना नाम उचारने मृग तृष्णा पेख पुलने उठे नगर गंधर्व जिन्ने सच अराध्या नानक मन तन पब पतत उदारन पार ब्रह्म समराथ।

अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र दुतिया माल कौशक आलापे सांग रागनी पांचो थापे।

करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लखवार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा निवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पालक होहे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे अजाई हुक्मी होवन जी हुक्म लह वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लुक दिख सुख पाई है एक न हुक्मी बखशीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मे जे बुझे ताह मैं कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने नीसान गावे को

एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव जिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान ओ वेखै ओना नदर न आवे बहुता इहो विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोहे लोहे पंडहार जुग छपाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पाव लख हो हे लख हो हे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया।

शर्मखंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए।

तिथे सीतो सीता महिमा माहिता के रूप न कथने जाहे ना उमरे न ठाके जाहे जनकाय राम वसे मन माहे तिथे भक्त वसे के लोग करे आनंद सच्चा मन सोए सच खांड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कर।

आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तगावो हरि केरा मन जिन्हें वसाया कह नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किच है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखमन आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुर विट हो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सुपागे घर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तहारिया पंच दूत दवास कीते काल कंट कमारिया तोर कर्म पाया दुद

कृपा करो पवित्र हुक्मनामा साहब जी बख्शिश करके समूह सेवक परिवार नगर निवासियों नु आसीसा बख्शिश करो अगे तो अपने दर घर दे नाल जोड़ के दर घर दीआं सेवावां बख्श के नवाजदे रहना जी सही प्यारे मेलो।

लड़ रहे हैं, बड़ा प्रबल उत्थे करतापन है। आस्तिक भी लड़ रहे हैं, मैं दानी, मैं ज्ञानी, मैं पुनीत। पुन पाप पुनते भई कहावत, को नरक को सुर्ग बजावत। जद करता होए ते की पाप ते की पुन। मैं बहुती तफसील ते इसकी नहीं बयान करांगा, कारण क्योंकि संगत देच अभ्यासी मनुखां दे अपने अपने दर्जे आउंदे ने। कोई किसी स्टेज ते बैठा है, कोई किधरे कोई किधरे। इस तरह दियां गल्लां न्याय शास्त्र दे करता गौतम ऋषि ने कहियां, उन्हों पढ़ के बहुती दुनिया नास्तिक होई। और नास्तिकता जद गालबन 1.5-2 हजार साल पहले हिंदुस्तान दिच किसी वक्त शिखरता ते भी पहुंच गई सी, इसे ऋषि नु पढ़ के, न्याय शास्त्र नु पढ़ के, 6 शास्त्रां दे चिक शास्त्र। और उसने बड़ी आलमाना ढंग नाल व्याख्या की थी, सब करता ही है। मैं लिख रहा, करता लिख रहा है, मैं बोल रहा, करता ही बोल रहा है। जिस पातशाह दी बाणी कहती, आप कथे आप सुनने हार, आप ही कथा कर रहे हैं, आप ही सुन दाते हैं, और कोई नहीं है। ते जो उन्हें इसनों लई है, ते हैरानगी होवेगी अगर इस सोच समझ ते इस अवस्था तो अगर मनुख तल्ले है, तो कुछ पकड़ देच नहीं आएगा, तालमेल नहीं बैठे। अगर इत्थे भी कथन ते सुनना वो करता ही है, तो फिर तो सब कुछ करता है। सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी है, अगर तेनू कुछ महसूस हो रहा है तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तेनू कुछ दिखाई दे रहे है, सुनाई दे रहे है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत, तू नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू कितो करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लेंदा है, तो इस दे ते जिम्मेवारियां बड़ी आ जातियां। तो जिम्मेवारियां दे तनाव नाल ये दुखी होंदा है, वरना ये करतापन इस तो हट जाए तो खिमा करनी नर्क की ते स्वर्ग की। पाप पुन ते भई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख होंदा ते की सुख होंदा, कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वै नहीं जाके, कंचन माटी वाने। इत दोवे बराबर न, कृत है करते दी कृत है, दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हूं, तो मेरी जिम्मेवारी की गुस्ताखी माफ हो रहे है। सब कुछ कीता नहीं जा रहे है। जब अपन आप उदारे तो शगन अपशगन कहां विचारे। इतनी समझ आ जाए मनुख आज पूरन हो गया, इतना बोध पैदा हो जाए आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा, अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपनी विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा। अज तक ते बड़े बड़े साइंटिस्ट विचारक दार्शनिक फिलोसफर मनुख दियां समस्यावां दा हल नहीं लभ सके, कोई भी नहीं हल लभ सके, अज तक ते नहीं लभ सके। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते सियानप काहो काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी, जो उसने अनरूप है हो रहे, सब कुछ हो रहे, तो भी होया है, सब कुछ हो रहे है। पर मैं दुखी क्यों हां, तू अपने आप नो कृत नहीं मनदा कर।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट